0: नमस्कार, आपका स्वागत है MOPCRS 107.8 FM, आर कम्युनिटी, आर रेडियो, आर प्राइड। जैसे विद्या बालन ने कहा था, फिल्में सिर्फ तीन वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ है विद्या वेंकटेश, जो हमारी सिनेमा की विद्या को बढ़ाएगी।
1: सिनेमा आज के मनोरंजन के मुख्य साधनों में सिनेमा का प्रथम स्थान है। मनुष्य खासकर आज के युवक युवतियों में मानसिक थकावट दूर करने के लिए सिनेमा से बढ़िया साधन और कुछ नहीं है। सिनेमा से आंखों का, कानों का और मन का मनोरंजन हो जाता है। इतना ही नहीं, आज के युग में सिनेमा बहुत से लोगों का जीवन आधार भी है। सिनेमा के बारे में पढ़ने के लिए भारत में ही नहीं विदेशों में भी विशेष पढ़ाई होती है। सिनेमा में बहुत से लोगों को धन भी मिलता है और कुछ लोगों के लिए वही प्राण है। सिनेमा से अन्य कलाएं जैसे संगीत, कविता, फोटोग्राफी, आर्ट डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी मेकिंग सभी विदेशों में भी तरक्की होती है। मेरा अटल विश्वास है कि हमारे कॉलेज की EM के कुछ छात्र सिनेमा के क्षेत्र में बढ़कर विश्व में कॉलेज का नाम करेंगी।
0: अब आप सुनेंगे सिनेमा की कहानी भार्गवी की जुबानी।
2: बॉलीवुड का अंश मुंबई से प्रारंभ हुआ है। 1970 में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म प्रोड्यूसर बन गया। भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1930 को हुआ था। राजा हरिश्चंद्र भारत के प्रथम नाटकीय फिल्म था। दादा साहेब फाल्के को हिंदी सिनेमा का पिता माना जाता है।
0: कहा जाता है कि दुनिया परिवर्तन के बिना नहीं चल सकती, उसी प्रकार भारतीय सिनेमा भी हर फिल्म के साथ बढ़ती आई है। जो सफर आलमारा से शुरू हुआ था, उस सफर के बारे में निष्ठा हमें और बताने आ रही है।
3: आलमारा सन 1931 में डायरेक्ट किया गया था। आदेश ईरानी ने यह फिल्म डायरेक्ट किया। आवाज का महत्व सिनेमा में जरूर

0: भी है, ऐसा आदेश ईरानी ने कहा। 80 साल पहले भारत और नाटकीय प्रेम करने वाले लोग आलम आरा का सालगिरह बनाए थे। भारत में अलग अलग प्रकार के भावना बनाए जाते हैं। अमिताभ बच्चन भारत और करोड़ों लोगों का मन जीते हैं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने हर भारत का दिल जीते हुए 20 साल बीत गया है। आज भी लोग इसे देखकर हंस रो पड़ते हैं।
1: तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान।
2: गानों में दर्द होता है, खुशी होती है और संदेश होता है। कोई भी फिल्म गानों के बिना अधूरी है और गाने बिना गीत का संभव नहीं है। हमारे भारतीय सिनेमा के दो जाने माने गीतकार गुलजार साहब और जावेद अख्तर साहब हैं। कृतिका और श्रीदा हमें इन महान गीतकारों के जीवनी पे बताएंगे।
3: गुलजार नाम के संपूर्ण सिंह कालरा हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक एवं नाटककार हैं। इनकी रचनाएं हिंदी, उर्दू और पंजाबी में पाए जाते हैं। प्रारंभ में वे मुंबई में एक मैकेनिक का काम करते हुए खाली समय में कविताएं लिखने लगे। उसके बाद वे बिमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार के तौर पर हिंदी फिल्म में काम किए। बंदनी फिल्म के लिए वे अपना पहला गीत लिखे और उसके बाद वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। 50 से भी ज्यादा फिल्मों को उन्होंने पटकथा, गीत रचना और निर्देशक का काम किया है। इनके देन के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया है। आंधी, इजाजत, कुछ और नज़में इनके कुछ मुख्य किताबें हैं। इन्होंने 20 से ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड और कई नेशनल अवार्ड भी जीते हैं। सन 2012 में उन्हें इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड भी दिया गया था। दूरदर्शन पर इनके लिखे बहुत कुछ सीरियल्स के प्रसारण हुए। सन 2013 में वे असम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी बनाए गए।

0: जावेद अख्तर भारत के जाने माने कवि, गीतकार और पटकथा लेखक हैं। उनका जन्म 17 जनवरी सन 1945 में हुआ था। वे 4 अक्टूबर 1964 में मुंबई पहुंचे और यहीं से उनके व्यवसायिक जीवन की शुरुआत हुई। काफी समय तक वे एक सहायक के रूप में काम किया करते थे और फिर उन्होंने अपने दोस्त सलीम खान के साथ जुड़कर कई फिल्मों की पटकथा लिखी है। इनमें से कुछ है अंदाज, शोले, सीता और गीता एवं डॉन। जावेद साहब अक्सर फिल्मों की कथा उर्दू में लिखते थे और उनके सहायक उसे दोबारा हिंदी में लिख देते थे। सलीम जावेद की जोड़ी 1980 तक ही थी, फिर जावेद साहब फिल्मों के लिए गीत लिखना शुरू कर दिए और इसी क्षेत्र में उन्हें काफी सफलता प्राप्त हुई। सन 1999 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2007 में पद्म भूषण दिया गया। उन्हें 14 फिल्मफेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनके जानी मानी फिल्में हैं कल होना हो, वीर जारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जोधा अकबर, बॉर्डर, रेफ्यूजी आदि। उनकी एक कविता जो हमारे दिलों को छूती है, मैं उसे अब पढ़ने जाऊंगी। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोलो अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा दिखाएं, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम।
1: चलो थोड़ा नच करें, चलो थोड़े मजे करें, चलो इस हफ्ते के टॉप 10 गानों की थोड़ी चर्चा करें।
2: नमस्ते, मैं दाशना आपके लिए इस हफ्ते के सबसे मशहूर गाने लाई हूँ। नंबर 10 पे है बन्नो, तनु वज मनु रिटर्न्स के फिल्म से।

0: भारतीय सिनेमा वह अकेली सिनेमा है जो हर हफ्ते एक नई फिल्म निकालती है। पिछले हफ्ते निकली फिल्म फैंटम के बारे में हमें प्रेक्षा बताएगी।
1: कबीर खान की फिल्म फैंटम मुंबई के 26/11 हमले के चार मास्टरमाइंड को नष्ट करने के एक आदमी की कहानी है। रॉ के प्रमुख उसे मुंबई में हुए एक आतंकी हमले के पीछे चार तोपों की हत्या एक विचारशील मिशन प्रदान करते हैं। जब तक दानियाल खान एक बदनाम सेना अधिकारी अलगाव की जिंदगी जी रहा है, वह उसे मदद करने का काम सौंपा जाता है जो नवाज मिस्त्री का सामना करना पड़ता है, जहां दानियाल के ऑपरेशन लंदन में शुरू होता है। उसका अगला शिकार डेविड हेडली है। फिल्म को नवाज द्वारा सहायता प्राप्त दानियाल अब लश्कर के सबसे खतरनाक आदमी हरीश सईदी के लक्ष्य रखा है, जहां अंत में पाकिस्तान में देश के लिए युद्ध ग्रस्त सीरिया के माध्यम से यात्रा कराता है। कबीर खान अब सिनेमाई छल करने की कला में महारत हासिल है। मैं फैंटम को दूंगी 5/4 स्टार और यही कहूंगी कि आप भी फैंटम देखें और फिर अपनी राय दें। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। और भी कई फिल्में रिव्यू जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ MOPCRS 107.8 FM।
0: आने वाले महीनों के मूवी रिलीजेस के बारे में हम स्नेहा जानकारी। नमस्ते। सितंबर 18 को कट्टी बट्टी आ रही है जो रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसमें इमरान खान और कंगना रनौत हैं। अक्टूबर 2 को सिंग इज ब्लिंग आ रही है जो अक्षय कुमार और एमी जैक्सन की है। ये मूवी प्रभुदेवा ने डायरेक्ट की है और सिंग इज किंग की सेकंड पार्ट है। अक्टूबर 22 को शानदार आ रही है जो एक और प्रेम कथा है जिसमें शाहिद कपूर, आलिया भट्ट और पंकज कपूर हैं। उसके पहले अक्टूबर 9 को जज्बा आ रही है जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन अपना कमबैक कर रही है। ये मूवी एक एक्शन ड्रामा है। नवंबर 27 को तमाशा आ रही है, ये एक इम्तियाज अली की प्रेम कथा है जिसमें रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण है। दिसंबर 18 को बाजीराव मस्तानी आ रही है, ये संजय लीला बंसाली की प्रेम कथा है जिसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा हैं। आखिर में दिलवाले भी उसी दिन रिलीज हो रही है जिसमें शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, जॉनी लिवर और कृति सोनान है। ये भी एक प्रेम कथा और एक कॉमेडी फिल्म है।
2: आज हम लोग ने हमारी सबसे मनपसंद विषय बॉलीवुड और फिल्म के बारे में जो कुछ भी थोड़ा जानते थे वो आपके साथ बता है। हम आप सबके आभारी हैं कि आपने हमारी बातों को इतनी रुचि से सुना। आपसे मुलाकात फिर होगी। नमस्ते और धन्यवाद।
0: यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के छात्रों ने प्रस्तुत किया है, पहले वर्ष वाले। आप सुन रहे हैं MOPCRS 107.8 आर कम्युनिटी आर रेडियो।